0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: Hi, this is Salman Khan, and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan, and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद कसलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है।

ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: मैं रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600 ਚੌਕਰ।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन, विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी
3: रेडियो।
4: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
6: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
4: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
7: हुन थोड़े मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
8: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

रेडियो हांजी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। 30 जून 2026 मंगलवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां लेके आए हैं। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल हाउस करदे हैं शुरुआत, ते फिर आस्ट्रेलिया ते फीफा दे विच होए उल्टफेर दे नाल जुड़ियां खबरां भी तुहाडे नाल करदे हैं सांझियां।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टंच।
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Haji 16748.

रेडियो हाँ जी 1674 AM मैं गौतम कपिल प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट। ईरान इजराइल ते अमरीका दे विच जंग हुंदी है। अमरीका ते इजराइल इक धिर ने ते ईरान इसे साल फरवरी च हुंदा है। तुहानू सब नू इस दे विच की कुछ नहीं पता।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
3: हाँ जी रेडियो।
4: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू ढिल्लों, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
6: पर ढिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
4: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. You are listening.
1: Hanji Hanji, Hanji Hanji, Hanji Hanji, Radio Hanji.
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Hanji.
3: Stay tuned.
4: यार तू इतनी इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाँ जी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन, विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

रेडियो हाँ जी 1674 AM, मैं गौतम कपिल, प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट। ईरान इजराइल ते अमरीका दे विच जंग हुंदी है। अमरीका ते इजराइल एक धिर ने ते ईरान दूसरे पासे दूजी धिर है। इसे साल फरवरी च हुंदा है, तुहानू सब नू इह सब कुछ पता है। इस दे विच की कुछ नहीं पता, इह जंग क्यों कीती गई। कहा तां इह गया कि इजराइल होर परमाणु हथियार नाल बना लवे, बट इज इट ऑल ट्रू, कि यह सब सच हैगा असल दे विच। इस तो पहला अमरीका ते ईरान दे दरम्यान परमाणु जंगबंदी नू लैके, या फिर इंज कह लिए कि यूरेनियम एनरिचमेंट नू लैके एक समझौता हो रहा सी, सिरे भी चढ़ गए असी ऑलमोस्ट। उहदी भी टाइमलाइन तुहाडे नाल सांझी करदे हां, पर इस सब दे दरम्यान फिर अचानक क्यों ऐसी लोड़ पै गई। दूसरा यह भी इस मामले दे विच सवाल पैदा होंदा है कि जदों लड़ाई तीन जाने ने शुरू की सी तो समझौता दो जाने दे विच क्यों होया। यानी कि इजराइल ने सब तो पहला हमला किया, अमरीका ने तो आके साथ ही दिता सी बाद दे विच, ते फिर अमरीका बनाम ईरान लड़ाई किवें बन के रह गई। इजराइल इस मामले दे विच प्रमुख धिर सीगा, बाहर किवें हो गया समझौते तो। तीजा, ये जंग जदों भी अक्सर कितें जंग लड़ी जाती है तो उहदा एक पिछोकड़ हुंदा, उहदी एक पिठभूमि हुंदी है। इस जंग की बैकग्राउंड की सी कि वाकई सिर्फ और सिर्फ इन्नी कि इजराइल हथियार बनाने लग्या, तो ईरान हथियार बनाने लग्या, तो इजराइल बना नहीं देना चाहता इस करके अटैक करता। ये होर भी कई कारण है, तो फिर ये भी एक वजह इसकी, एक प्रोग्राम का एक हिस्सा यह भी, ये भी गल करा कि जदों ये जंग एडिया बड़िया दो ताकतों के सी, एक पासे ईरान तो दूसरे पासे इजराइल ते अमरीका, तो इजराइल तो कदे भी पाकिस्तान की विचोलगी मानदा ना, तो फिर इजराइल नू कि इसे करके उस समझौते तो बाहर रखा गया। पाकिस्तान ने समझौता की विचोलगी किवें करवाई, हुण सारियां परतां जदों खुल रही ने तो उहदी इनसाइट रिपोर्ट तुहाडे तक आपां भी लैके आए हैगे। कोशिश करदे हां, उम्मीद करदे हां कि सारियां जानकारियां तुहाडे तक उदां ही दे सकीए जिद्दां जिस टाइमलाइन दे विचे सारियां चीज़ां होईयां हैगियां ने। अज दे इनसाइट रिपोर्ट दे विचे तुहाडे तक जिहड़ा असर पिया कि तेल महंगा होया, समान महंगा हो गया, दुनिया च महंगाई आ गई, इस दे पिछे जिम्मेदार कौन है, अमरीका या कोई होर।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं हूं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो जीवर 16।

0: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM, कीप लिसनिंग।
1: ओए असीन लौरिए हुन्ने आ, स्याणे बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे, चलाक बंदे दी असी अख पढ़ लें।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Oh, oh, oh.

सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आंखें पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Radio Hanji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
2: Radio Hanji। Stay tuned।

0: यो हाँ जी 1674 है।
1: हाँ जी मैं तो अपना गैरी संधु सो ड्राइवर का मुंडा पेंट रोड़का गला उस समय की गल कर लगा जब मैं कनेडा में पहली बार गया मेरा फ्रेंड मैं कैक्टस क्लब ले गया उसे मेरे वर्गा देसी बलैदन बीबी तो स्नैपचैट आई डी मांगता सी मैं गाना।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: 52 वर्ष की आयु में मैंने यही महसूस किया कि जीवन बहुत सारे सुनहरे अवसरों से भरपूर है। साथ ही साथ मैंने प्यार और प्रकाश की शक्ति को भी महसूस किया। थोड़े समय से मैं अनुभव कर रहा था कि मैं जिससे भी मिलता हूँ वो कुछ ना कुछ खोज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं कुछ विशेष, शायद खुशी, संतोष, मन की शांति। 10 मास पूर्व मेरी मुलाकात लंदन में एक महान आदरणीय योगी से हुई। तब से एक लंबी तलाश के पश्चात मेरा जीवन एक दरिया के समान धीरे धीरे विशाल सागर की ओर बहने लगा। इस मुलाकात के थोड़े समय बाद ही माउंट आबू राजस्थान से मुझे पीस ऑफ माइंड कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिला, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इसे प्यार से मधुबन कहा जाता है। भारत यात्रा की मेरी बरसों की इच्छा थी और ये था मेरे लिए समय का बुलावा। उस महान योगी ने मुझे 2 प्रश्नों पर गहराई से विचार करने को कहा था। मैं कौन, परमात्मा कौन? मेरे दिल की गहराई से बार बार यही आवाज आ रही थी कि इस यात्रा में मेरे प्रश्नों का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। भारत पहुंचने के पश्चात जल्दी ही वहां की सड़कों पर निरंतर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों और स्वच्छंद रूप से विचरण करते पशुओं से मैं परिचित हो गया। माउंट आबू जाने के मुख्य रास्ते पर हमने ऊंट गाड़ियां देखी, उनके कारण जगह जगह हमें रुकना भी पड़ा। खैर, हम सही सलामत ठीक समय पर आबू रोड पहुंच गए। आबू रोड अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। माउंट आबू समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां पहुंचने के लिए हम 1 घंटे तक संकरे और घुमावदार पहाड़ी विस्तार में पढ़ते रहे। हरे भरे मन भावन दृश्यों को देखते देखते अंततः ज्ञान सरोवर प्रांगण में पहुंचे। इसका दूसरा नाम एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड भी है। वहां पहुंचते ही वहां का वातावरण बाह्य जगत से बिल्कुल ही भिन्न महसूस हुआ, जैसे कि हम निर्वाण में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने वास्तविक घर में पहुंच गया हूं। इस परिसर में चारों तरफ स्नेह और अपनत्व का आभास हो रहा था, जैसे एक परिवार, एक नए परिवार, एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हूं। सुव्यवस्था और स्वच्छता हर तरफ विद्यमान थी। सुंदर फूलों, पेड़ पौधों और हरे भरे घास के मैदानों से हर कोना सजा हुआ था। अत्यंत गहरी शांति की महक चारों तरफ छाई हुई थी। एक ऐसा स्थान जहां शोरगुल का और किसी अप्रिय बात का नामो निशान न था। सहयोग, सद्भावना, सादगी, सहनशीलता, एकता और सम्मान के गुण सर्वत्र दिखाई दे रहे थे। वायुमंडल में चंपा और चमेली की महक से भीगी खुशी और आनंद की तरंगें फैली हुई थी, जो अलौकिक आनंद की अनुभूति करा रही थी। इस विश्वविद्यालय द्वारा माउंट आबू में बनाया गया ज्ञान सरोवर दूसरा कॉम्प्लेक्स था। 1995 में पूर्ण किए गए इस कैंपस में 1500 मेहमानों को ठहराने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ 250 समर्पित राजयोगियों के रहने का संपूर्ण प्रबंध है। रात्रि भोजन के पश्चात हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संक्षिप्त इतिहास से अवगत कराया।
1: जब उनसे पूछा जाता है,
0: 1936 में 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं बहनों के छोटे से संगठन को लेकर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। उस परम शक्ति द्वारा कई दिव्य साक्षात्कार कराए गए, जिन्हें परमात्मा, शिव, अल्लाह आदि कई नामों से जाना जाता है। उन्होंने स्वयं को गुरु नहीं बल्कि परमात्मा का माध्यम माना। ब्रह्मा बाबा पहले एक सुप्रसिद्ध रईस और हीरों के भारतीय व्यापारी थे। इन्होंने माताओं और बहनों को संस्था के संचालन का संपूर्ण कार्यभार देकर उन्हें सम्मानित कर शक्तिशाली बनाया। इन्होंने 93 वर्ष की आयु में अपने भौतिक शरीर को त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। उनके अव्यक्त होने के बाद इस संस्था का विस्तार तीव्र गति से हुआ। वर्तमान समय में इस संस्था का कारोबार उन महान विभूतियों के द्वारा हो रहा है जिनकी आयु प्रायः 80 वर्ष के नजदीक है और वे दादी के रूप में जानी जाती है। दादी यानी बड़ी बहन, जिन्होंने संस्था के प्रारंभ में स्वयं को सेवा के प्रति तन मन धन से समर्पित किया। यहाँ की हर सेवा मातृत्व स्नेह की झलक दे रही थी। ये दादियाँ अपनी बड़ी उम्र के बावजूद पूरे विश्व में अथक रूप से निस्वार्थ सेवा हेतु भ्रमण करती रहती हैं। उसके बाद हमारा परिचय दादी प्रकाशमणि जी से कराया गया, जो इस विश्वव्यापी संस्था की मुख्य प्रशासिका है। मुझे ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा कुमारी इसका वास्तविक अर्थ है ब्रह्मा की पुत्री। 1936 में अपनी बाल्य अवस्था में ही दादी जी ने इस संस्था में पदार्पण किया। तत्पश्चात इस मायावी दुनिया से संपूर्ण रूप से अलग हो गई। वे एक बहुत ही कुशल संचालिका के रूप में भी उभर कर सामने आई। समग्र विश्व की राजनैतिक और आध्यात्मिक विभूतियों द्वारा उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है। दादी जी ने बताया, आध्यात्मिकता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है जो सबके जीवन से प्रायः लुप्त हो चुका है। दादी जी से संपूर्णता में प्राप्त होते ही शुद्धतम स्वर्णिम ईश्वरी प्रेम के स्पंदन, सद्भावना शांति और समृद्धि से संपन्न योग, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हो, जिसकी कल्पना सदियों से मानव करता रहा है, जहां क्रोध स्वार्थ और बेईमानी का नामो निशान ना हो, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही मानवता का पुनरुत्थान संभव है। मेरे बाकी के दिन वार्तालाप श्रृंखलाओं, सेमिनारों, योगाभ्यास, अन्य परिसरों के परिभ्रमण, सैर, खरीदारी, दर्शनीय स्थलों के अवलोकन, पिकनिक, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बीते। इसी दौरान हमने दिलवाड़ा मंदिर भी देखा, जो भारत में जैन वास्तुकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। परिसर विहार के अंतर्गत ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अत्यंत दुर्गम स्थान पर स्थित होते हुए भी यहाँ उच्च तकनीकी के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर भोजन पकाने, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ टेलीफोन एक्सचेंज, कंप्यूटर और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए भी विद्युत उत्पादन सौर ऊर्जा से ही होता है। मैंने इस बात पर भी गौर किया कि यहाँ पर भोजन भी परमात्मा की याद में ही रहकर बनाया जाता है, जहाँ शुद्ध रूप से शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। उस दिन का प्रमुख प्रवचन दादी जानकी द्वारा दिया गया, जो इस संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका है। दादी जानकी जी लंदन में रहकर विदेश सेवाओं का संचालन करती हैं। दादी जी को एक कुशल वक्ता और मार्गदर्शक होने का वरदान प्राप्त है। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही दूसरों के हित का ख्याल रखना दादी जी की विशेष धारणा रही है। एकाग्रचित स्थिति और संपूर्ण दृढ़ता, ये दोनों ही गुण इनके जीवन की विशेष शोभा है। दादी जी बुद्धिमत्ता के वाहक नामक ईश्वरीय और धार्मिक गुरुओं के उस संगठन की सदस्य हैं, जो राजनेताओं को पर्यावरण एवं मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित सलाह देता है। इन दादियों की विनम्रता, निस्वार्थ प्यार, निरहंकारिता, विनोद वृत्ति और हृदय की विशालता से हर कोई प्रभावित होता है। उनका अपना कुछ न होते हुए भी वो संसार को सब कुछ दे रही हैं। ये दादियां अपने कार्य चेहरे पर शिकन लाए बिना अथक रूप से करने के लिए विख्यात हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रसंग होगा जब दादियों से भेंट के दौरान टोली अर्थात प्यार से निर्मित प्रसाद न प्राप्त हुआ हो। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन एवं बुद्धि को भी रूहानी स्थिरता मिलती है। दृष्टि दो व्यक्तियों के बीच सरल वार्तालाप का माध्यम है, जिसके द्वारा दूसरी आत्मा के अंतर जगत को गहराई से देखा जा सकता है। हर एक रूहानी हस्ती में छुपी पवित्रता और प्रकाश की शक्ति और उसके सद्गुणों का दर्शन भी किया जा सकता है। एक दिन हम मधुबन भी गए, जो ब्रह्मा बाबा की तपस्या स्थली है। यहीं से ही संस्था की व्यवस्था संचालित होती है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहन रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पहुँचने मात्र से ही अति सहज रूप से शांति की गहरी अनुभूति होती है। योगी जीवन का अर्थ सिर्फ गंभीर हो जाना ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त खुशी और आनंद का माहौल ध्यान देने योग्य था। इसकी एक सुंदर झलक यहाँ के दर्शनीय और मनोरंजक पीस पार्क में भ्रमण के दौरान मिली।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटंच विच भी तुहाडी सेवा विच।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी, आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji,
2: 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji,
0: stay tuned.
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवी डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: हार दे रही तू।
1: हाँ जी स्विंग ग्रोवर, स्विंग ग्रोवर। हाँ जी हाँ जी 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674। सुनते रहो सुनते रहो। हाँ जी AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

रेडियो हाँ जी 1674 AM, मैं गौतम कपिल, प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट। ईरान इजराइल ते अमरीका दे विच जंग हुंदी है। अमरीका ते इजराइल एक धिर ने ते ईरान दूसरे पासे दूजे धिर है। इसे साल फरवरी च हुंदा है, तुहानू सब नू सब कुछ पता है। इस दे विच की कुछ नहीं पता, ये जंग क्यों

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां इक मूवी दा नाम हमेशा आउंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
4: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।